0: BFBS Gorkha Radio.
1: BFBS Gorkha Radio कार्यक्रम में लामी चांस रहता यो समय गुदली को आखिरी घंटा वाला समय हमें संगा 7 बजे का लगी 22 मिनट बाकी रहे कुछ सब रबी में जानकारी रुरे रहे का संस्रोता जस्मते अब ये जुलाई मंथ में अपनी इवेंट्स अरुषन मिडलैंड नेपाली मेला 2026 होने का रहे कुछ 27 जुलाई रा यूजी दूसरों को 12 बजे देखियो ने सा वेनिस मेलबोर्न पार्क नॉटिंगहम में ने सा रा यहाँ से विभिन्न कार्यक्रम रहे कुछ सा जहाँ से इवेंट्स रहे कुछ सा फ्री एंट्री हो ये से बाय द वे Family friendly event ho, Nepali food and goods or sa culture and events, music and entertainment or reko sa experience karna saknu huncha yo samay ma celebration pani in the heart of Nottingham reko sa. Ra yesai anusar tapai le abo bishesh gari hami ya Midland se quite far away ko karle garda re ta haru airanu parne huncha London tira Nepali mela haru. So Midland ko aafle pani Nepali mela yo bhayeko kram ma se gaera enjoy garna saknu hunecha. Ra aile lai pani aunus aba pani hami feri pani karyakram agadi badhne nai chau. तपाईँको माझमार्को एउटा मिठो गीतको साथमा अहिलेलाई अगाडि बढाउने नै छु र रहेको छ झुमा लिम्बुको आवाजमा यी साइला इन्जोय गर्नुहोला यो मिठो गीत पनि